मुआज़्ज़ज़ सामईन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर हम गुनाहगारों के लिए दुआ मांग रहे हैं। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के फलां फलां लोगों को मुआफ़ फरमा दिया है, और बाद ऐसे लोग हैं जो मज़लूमों का हक़ जुल्म से जिन्होंने छीना होगा, और बाद फलां फलां जो गुनाह करने वाले हैं उनके सिवा अल्लाह ताला ने आपकी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बाकी गुनाहगार जिनकी अभी बख्शिश नसीब नहीं हुई, अल्लाह ताला की बारगाह से उनके लिए बख्शिश का परवाना नहीं मिला। उन गुनाहगारों का गम, उन गुनाहगारों की बख्शिश का दुख दिल में रखकर रोते हुए अरफात से निकलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब मुजल्फा पहुँचते हैं तो यहाँ पर मगरब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उम्मत के गम में और बख्शिश की दुआ मांगते हुए कुछ देर आराम करते हैं। आला सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उठते हैं और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर अर्ज़ करते हैं, मौलाए करीम, मेरे उम्मती तो गुनाहगार हैं, जुल्म करने वाले हैं, मगर तू इस बात पर कादर है और कुदरत रखता है कि तू गुनाहगारों को, जालमों को मुआफ़ फरमा दे और जो मज़लूम है उनको अपनी तरफ से जन्नत में और ज़्यादा नेमतें अता फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुज़ल्फ़ा की सुबह अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर ये दुआएं मांग रहे थे कि अचानक सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके जो गुनाहगार उम्मती हैं उनके लिए जो आपने बख्शिश की दुआ मांगी है उसको भी कबूल फरमा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुस्कराए ऐसे कि आपके दंदान मुबारक से नूर की शुआएं निकलने लगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए देखा तो खुश हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रखे, खुश रखे। हुजूर, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, ये जगह और ये वक्त इस तरह मुस्कुराने का तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ताला के दुश्मन इबलीस ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है मेरे गुनाहगार उम्मतियों के हक़ में और मेरी उम्मत की अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी है, तो इबलीस शैतान मिट्टी की मुट्ठियाँ भर भर कर अपने सर पर डालने लगा है और वो अप रो रो कर वावेला करने लगा है और ये कह रहा है कि मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इसकी इस हालत को देखकर मुझे हंसी आ गई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं जो हर मुकद्दस मकाम पर जब पहुँचते हैं
تو ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔

बखुदा उनके चेहरे सरापा नूर होंगे और वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर उन्हें बिठाया जाएगा। दूसरे लोग खौफ ज़दा होंगे और उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। लोग हुज़्नो मलाल में मुबतला होंगे लेकिन इन्हें कोई हुज़्नो मलाल नहीं होगा। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा पढ़ी कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह ताला के जो वली हैं उन पर ना कोई खौफ है ना कोई गम होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला के जो वली हैं, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे औलिया अल्लाह हैं, दुनिया में तो इनकी अज़मतों को आप देखते हैं। कई सौ साल गुज़र गए, हज़ार साल गुज़र गए, आज भी उनके मज़ारात पर दीवे बलते हैं और लोग मोहब्बतों के फूल निचावर करते हैं। ये तो दुनिया में उनका मकाम है, मगर यही लोग क़यामत वाले दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, ये लोग क़यामत के दिन भी बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह सुबहानहु व तआला की जवारे रहमत में होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ये मर्तबा अता फरमाया होगा।